0: Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months. Dubai is the place. 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
1: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं ऑन एयर हो ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com
2: Sounding good throughout the night with the biggest soothers it's your Laika Radio

0: Reg Badden drives you home every weekday afternoon at 4 p.m.
1: दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया, पलके झुकी

मन्ने सगल पवन की शुद्ध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग ना चले पंच, मन्ने धर्म से ती सनबंध।

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहें उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

होए ता लिखिए लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप साला ही साला एती सुरत ना पाया नदियां ते वहां।

तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई। है भी होसी जाए ना जासी, रचना जिन रचाई। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी, माया जिन उपाई। कर कर वेखे की ता अपना, जिव तिस दी वडियाई। जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहिब, नानक रहन रजाई।

जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग।

0: ਅਤੇ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Mamster products are nut free and made in Canada now available at your nearest Asian grocery store
2: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
3: द पीपल ऑफ ब्रिटेन लव देयर स्पिन बाइक्स दे बॉट लोड्स ऑफ देम अनदर थिंग दे लव इज मूविंग देयर क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस टू अ बार्क्लेकार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड बिकॉज़ दे कुड पे नो इंटरेस्ट फॉर अप टू 36 मंथ्स नो वंडर इट्स रियली टेकिंग ऑफ A balance transfer fee of 3.15% applies, subject to financial status, T's and C's and exclusions apply. Check if you're eligible at barclaycard.co.uk. Representative example, 24.9% APR representative variable and 24.9% purchase rate per annum based on a £1,200 credit limit.
4: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk. A Leica Radio classic plays now.

0: 2026
1: 9 से 10 अक्टूबर प्री नवरात्रि
0: और 11 से 19 अक्टूबर नवरात्रि का जश्न।
1: काजल पांड्या और अविनाश बारोट के साथ लाइव म्यूजिक पर झूमो, गरबा खेलो।
0: 17 अक्टूबर किड्स गरबा और 24 अक्टूबर शरद पूनम गरबा भी।
1: मिलते हैं एशियन कम्युनिटी सेंटर, व्हाइट हार्ट रोड, लंदन, SE18 1DG।
0: टिकट्स बुक करो segalondon.co.uk।
1: सेगा नवरात्रि, भक्ति, मस्ती और गरबा।

0: visit starters.co.uk or call
1: 0208-900-2323.
2: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
3: मेरे बेटे के लिए justice चाहिए.
4: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए.
2: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
5: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है.
2: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
5: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है.
2: Releasing nationwide by Zee Studios.
6: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट. ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
7: Add देसी तड़का to your routine with जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स. खाखरा नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
6: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
8: अल नूर, पुराना बाइतमाद नाम, नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस, प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस. एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है. अल नूर, टेस्ट द डिफरेंस.
9: एड क्रंच टू योर सेलिब्रेशंस विद हल्दीराम्स.
10: आलू भुजिया, पंजाबी तड़का, बॉम्बे मिक्स, खट्टा मीठा, नींबू मसाला एंड मोर. मेड फॉर शेयरिंग.
9: शॉप एट haldiramuk.com और एट योर नियरेस्ट ग्रोसरी store.
5: Haldiram's.
11: That's my orchestra of rubber ducks playing for me whilst I soak in a bubble bath. Yes, I have rubber ducks playing for me. I wish I could tell you that checking your tax and making any claims on the HMRC app felt like this. But I wouldn't go that far. Although, it is easier, and it will make you feel that little bit more on it.
12: For your money and tax, download the HMRC app and be on it today. You're on it.
13: A Leica Radio Classic.

0: Gold Rate is sponsored by Gold Bank London. Visit us online at gold-bank.co.uk or visit us in store on 215 The Broadway, Southall.
1: Okay, gold today is trading at £100 and 60 pence per gram.
0: Gold Rate is sponsored by Gold Bank London. Gold outperforming all other investment options. So invest in gold with Gold Bank London. 215 The Broadway, Southall, or buy from us online at gold-bank.co.uk.
2: Weekend Drive with Annika.
3: Leica Radio.
4: Winner, winner, roast for dinner. This autumn at Aldi. Feed four for under £7 with British whole chicken, broccoli, carrots, roast potatoes, chicken gravy granules and Yorkshire puddings. Tuck into low prices at Aldi. For full T's and C's, see aldi.co.uk/swap.
5: गरम सत समाज यूके के साथ मनाइए नवरात्रि गरबा
6: 11 से 20 अक्टूबर तक 10 रातों का जश्न और 24 अक्टूबर को स्पेशल शरद पूनम
5: आइए नक्षत्र हॉल फेल्थम TW13 7NA
6: रात 8 बजे से देर रात तक टिकट सिर्फ £5 पर पर्सन पर नाइट 5 साल से छोटे बच्चे फ्री
5: फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आइए जमकर गरबा खेलिए टिकट्स और जानकारी के लिए महेंद्र भाई को कॉल करें
6: 07956458872
5: तो मिलते हैं गरबा में
7: London, get ready for an unforgettable night.
8: Legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shah Zaman Ali Khan,
7: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
8: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
7: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
8: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
7: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
9: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
10: मैं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए.
11: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए.
9: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
12: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है.
9: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
12: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है.
9: Releasing nationwide by Zee Studios.

0: Now visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
2: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
1: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: अल नूर, पुराना बाइतमाद नाम, नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस, प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस, एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है। अल नूर, टेस्ट द डिफरेंस।
4: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
5: Winner, winner, roast for dinner! This autumn at Aldi! Feed four for under £7 with British whole chicken, broccoli, carrots, roast potatoes, chicken gravy granules and Yorkshire puddings. Tuck into low prices at Aldi. For full T's and C's, see aldi.co.uk/swap.
6: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Trending track of the week. Like a Radio.

0: Danube 11 Properties is delivering 11 projects in just 11 months. Dubai is the place. 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting. Danube 11 11 Danube
1: Properties. लंडन हेलो गरबे गुमवा श्री 27 गाम पाटीदार समाज यूरोप साथे मानो नवरात्रि भारत ना लाइव बैंड साथे 10 थी 20 अक्टूबर सांजे 7:30 थी एट 27 पाटीदार सेंटर वेम्बली एडल्ट टिकट्स 10 पाउंड्स 16-17 ने 18 अक्टूबर 15 पाउंड्स 5 थी 10 वर्ष ना बालकों ने 5 पाउंड्स अंडर 5 फ्री 11 रात नो सीजन पास 100 पाउंड्स रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क 27 गाम पाटीदार समाज ना गरबा इटले Best and best.
2: Sunshine, skyscrapers and souks for less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
3: Flying direct with Emirates so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
2: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
3: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
2: Southall Travel. At all protected.

0: 633 now. Apta bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
1: Khakra crunch, bhakri munch, chikki sweet, papad beet, pickles heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
2: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
1: Jaimin Foods, desi cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
3: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है

0: Gold Rate is sponsored by Gold Bank London. Visit us online at gold-bank.co.uk or visit us in store on 215 The Broadway, Southall.
1: I'll just give you the gold rate. Gold is trading at £100 and 60 pence per gram. And finally, signing off.
0: Gold Rate is brought to you by Gold Bank London. Gold prices have hit a record high. It's time to sell your unwanted gold. Sell your gold with Gold Bank London, 215 The Broadway, Southall, or buy online at gold-bank.co.uk. Niraj on the Sunday Showdown. Proudly sponsored by tickets2india.co.uk. For the best rates, book online or call 020-8518-9100. Bringing India closer.
2: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
3: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर Your travel mantra.